अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछते।

अभिमहान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भूख।

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहाँ विचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अपेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त।

श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

पंच प्रधानते जिह जान्यो पर पंच कुसंबास बहुरंग कणो सब मिथ्या बल बंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस दे देओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान संग।

जिन सतगुर मिलिए सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए सतगुर की रीस है।

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े, तुद नो सब ध्यान दी।

करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगै ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

हर वस संभाले, नाम निधान हर बन जिये, हीरे पर वाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे, से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाई है, ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग मह होया।

मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै,

भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन मन।

कहे बड हम ही जिसह बुझाए सोई बुझे बिन बुझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूक इन विद्मान कलही है।

दुख अंडोह नहीं तेह ठाव नाथ सविश फिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोहे खूब।

साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान।

तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक अनंत करह हर पू।

संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेव हो जो उपजाए सो अलाख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

रहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, धीरज धड़ी बंधा।

सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन, एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

ले हो। भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे, अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे। भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार अपरंपर, आप अपना जाने क्या एह जंत विचारे कही है, जो तुद आख बखाने जिसनों

शिंगार हबरस अर्पिए, जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए, तह साध संग ना डरपिए, कर कीरत गोविंद गुणिए, सगल पराशत दुख।

वे पापी सदा फिरहै अपराधी, मुखो अपर सतह अवह, सदा सदा फिरहै अभिमानी, सगल कुटुंब डुबावहै।

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहा। जल तरंग अरसेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई। इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

देखभाल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया त्रिप्त अगाने मुक्त पय जोत समाए।

आठ पहर हर के गुण गावे, भगत प्रेम रस माता, हरख सोग दुह माहे निराला, करण हार पछाता, जिसका

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

दुख अधिक जन्म मरण पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमण गुरमत निहचल मन मन मनंग सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनंग सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं भय पाए भगत तार।

जिन लागी हर लिव तुम्हारी जी जंत सभे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाच है जिन गुरमुख शब्द लिवला।

उसात अभिमानी परम भूल नजर ना आवनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी कर पेख थके पेखवानी।

कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइए। कोय न मेटै प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइए। कहो नानक।

खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे न रज्जै, तुद करते तू हा।

हर प्रभर वह ता पावह मोख द्वार रहाओ। गुणा का निधान एक है आपे दे ता को पाए बिन ना।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार, वडहंस महला तीजा, रसना

निर्मल मन करण घट घट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हौ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस्चारो गुण

मिलहै जे सतगुर लागहै साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख।

हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

पंच पदे। अपना कर्म उस राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा, कर दर राख है जे रस चाख है। जो

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अप

नानक गुरमुख मिलहे वडिया ज्ञान जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

आई किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप।

बिन गुर मूड भय है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा बिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत

ਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ਸੰਤ ਆਬ ਮਨ।

शेष रहै। आद पूरन मध्य पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है। एक

भोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करण माया अनेक उदमहि।